0: your song.
1: Only on City FM 89. FM 89.
2: You got me going crazy.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89, we're playing the song.
5: Trending today.
6: Rapper Rick Ross is back with a brand new album titled Set in Stone. The project has 19 tracks and is up on all platforms.
3: You're listening to City FM 89.
7: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
8: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट नो वरीज.
9: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना.
10: We are
3: City FM 89.
11: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ. जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत. कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी. अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक. इजी वाला बैंक.
4: सिटी एफएम 89.
2: यू गॉट मी गोइंग क्रेजी.
12: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है वो भी किस्तों में. बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में. तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश.
3: सिटी एफएम 89.
4: वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग.
13: यू आर लिसनिंग टू द ब्रेकफास्ट शो विद शर्मीन.

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: Nine. This show is brought to you by Jazz
3: City FM 89.
4: Trending today.
5: Rapper Rick Ross is back with a brand new album titled Set in Stone. The project has 19 tracks and is up on all platforms.
2: You're listening to City FM 89.
6: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
7: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट नो वरीज.
8: शेयर्ड बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना.
9: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ. जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केटप्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत. कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी. अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केटप्लेस एक्सप्लोर करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
10: वी आर
2: सिटी एफएम 89.
11: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है वो भी किस्तों में? बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में. तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश.
2: City FM 89, we're playing your song.
12: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
3: सिटी एफएम 89।
4: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
5: ABD. The rush hour. 5 to 8 p.m.
6: A new era begins.
7: City FM 89. We are playing your song.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.
8: Yeah. Ice.

0: 89.
1: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
2: Hold on, special delivery coming through.
3: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
4: We're now live on WhatsApp.
5: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
4: It's as easy as 03142-898989.
3: Save our number now and WhatsApp us.
4: We are
6: City FM 89.
4: You're listening to
7: Non-stop hits.

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This time check is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: Trending today.
5: Rapper Rick Ross is back with a brand new album titled Set in Stone. The project has 19 tracks and is up on all platforms.
6: City.
7: City FM
1: 89.
8: Shared bundles. Wo bhi discount par. Subscribe karna to banta hai. To bas abhi. Jazz Cash app se Jazz V5 Fantastic Bundle lagao aur pao 2000 rupaye tak ka behtareen discount apne favorite bundles par bade discounts ke liye Jazz Cash hai na.
9: Have you saved our WhatsApp number yet?
10: 03142898989.
9: Get in touch over WhatsApp.
11: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है वो भी किस्तों में बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में तो जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश
12: यू आर लिसनिंग टू सिटी एफएम 89 वी आर
13: प्लेइंग योर सॉन्ग
1: यू आर लिसनिंग टू
14: नॉनस्टॉप हिट्स
15: No talk.
16: Just you
15: and the music.
16: Back to back starts now.

0: the perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: It's 5:30 PM.
4: City FM 89.
5: This show is brought to you by Jazz.
6: City FM 89.
7: This show is brought to you by AEO Pakistan.
4: City FM 89.
8: Pediasure se Eileen ko milta hai complete balanced nutrition with 37 vital nutrients including arginine and vitamin K2 for bone and muscle growth. Taake ye grow kare 50% faster.
9: तैयार हो अपनी जिंदगी का अगला कदम लेने के लिए AEO पाकिस्तान लाया है आइल्सॉन कंप्यूटर जहां टेस्टिंग का हर पल होता है कंफर्टेबल स्मूथ और स्ट्रेस फ्री डेली अवेलेबिलिटी नेशन वाइड सेंटर्स और रिजल्ट्स भी मिले विद इन जस्ट 3 डेज आज ही बुक करें अपना आइल्सॉन कंप्यूटर AEO पाकिस्तान पाकिस्तान मोस्ट ट्रस्टेड आइल्स टेस्ट सेंटर Book now at www.aeo.com.pk.
10: City FM 89, we're playing the song.
11: Mornings evolve, and so do we.
12: City FM 89's breakfast show is the best morning companion you can have.
13: Hello, hello, hello. It's me, RJ Shermin, your host on the breakfast show.
11: The freshest music, the hottest gossip.
12: And the energy Gen Z lives on.
11: It's bold, it's current, it's your morning routine.
12: The Breakfast Show.
11: Only on City FM 89.
14: City FM 89. We're playing your song.
12: You're listening to
15: The

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं, इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क. इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज.
4: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर. इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
5: आईओटी सीम्स डिफिकल्ट. 4 सेक्शंस, लिमिटेड टाइम, high pressure.
6: Listening, reading, writing, speaking.
5: Not with AEO Pakistan.
6: Expert trainers, mock tests, speaking practice, tips and strategies.
5: Learn strategies that actually work.
6: Practice plus structure equals better score. Improved fluency, better writing, higher band score.
5: Reserve your spot now at 0320-346-1147. 0320-346-1148. Visit now at www.aeo.com.pk.
7: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है, वो भी किस्तों में? बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय JazzCash.
8: City FM 89. We're playing your song.
0: You're listening to
9: Dark Room with Tapu Javeri.
10: Boogie Wonderland, the elements as in earth, wind and fire together creating that fabulous track. And meanwhile, a disco anthem. This is The Tramps with Disco Inferno.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: It's 7:30 PM.
2: City FM 89.
3: Pediasure se Eileen ko milta hai complete balanced nutrition with 37 vital nutrients, including arginine and vitamin K2 for bone and muscle growth. Taake ye grow kare 50% faster.
4: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
5: Shared bundles. वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
4: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट नो वरीज.
6: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस. 50 से ज्यादा प्लान, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत. कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी. अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
7: Mornings evolve and so do we.
8: City FM 89's breakfast show is the best morning companion you can have.
9: Hello, hello, hello. It's me, RJ Shermin, your host on the breakfast show.
7: The freshest music, the hottest gossip.
8: And the energy Gen Z lives on.
7: It's bold, it's current, it's your morning routine.
8: The breakfast show.
7: Only on City FM 89.
10: City FM 89.
11: Attention, all party starters, weekenders, all-nighters, celebration seekers, beat kickers, thrill seekers, disco lovers, party hoppers, shakers, movers, non-stoppers. It's time to get together and dance, because this is Beat Camp.
12: Every Friday and Saturday, 10 p.m. to midnight, only on City FM 89.
13: City FM 89, we're playing your song.
8: You're listening to
14: Dark Room with Tapu Javeri.
15: And again, from the album Staying Alive and Saturday Night Fever, this is Van McCoy with The Hustle.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: Pediasure se Eileen ko milta hai complete balanced nutrition with 37 vital nutrients including arginine and vitamin K2 for bone and muscle growth. Taake ye grow kare 50% faster.
3: Hire ka naya no frost IoT refrigerator jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean. Twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
4: Behtareen insurance har waqt aapke saath, jaise easy paisa insurance marketplace. 50 se zyada plans, behtareen coverage, khas discounts aur sirf 24 ghanton mein claim hasil karne ki sahulat. Khawateen ke liye dedicated plans aur 25,000 top doctors se consultation bhi. Abhi easy paisa app par insurance marketplace explore kare. Easy paisa digital bank, easy wala bank.
5: Taiyar ho apni zindagi ka agla kadam lene ke liye? AEO Pakistan laya hai IELTS on computer, jahan testing ka har pal hota hai. Comfortable, smooth aur stress free. Daily availability, nationwide centers aur results bhi mile within just 3 days. Aaj hi book kare apna IELTS on computer. AEO Pakistan, Pakistan's most trusted IELTS test center. Book now at www.aeo.com.pk.
6: Shared bundles, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए. जैस कैश है ना.
7: Christian College, a chartered university, the only member of the Global Liberal Arts Alliance in Pakistan. FCCU offers a unique opportunity to attain American-style education at an affordable fee structure. Scholarships and financial assistance available. Admissions open for bachelor's, master's, MPhil and PhD programs. Apply now.
8: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं? इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क. इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज.
9: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है, वो भी किस्तों में? बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश.
0: City FM 89, we're playing your song.
1: You're listening to
10: Dark Room with Dabu Javeri.
11: The 70s was all about letting your hair down, wearing whatever you liked, enjoying music, enjoying love, and everything. Up next, we have a band which just sort of epitomizes that. This is Kool and the Gang with Get Down On It.

0: City FM 89. It's 8 p.m.
1: This time check is brought to you by Jazz.
2: City FM 89.
3: Trending today.
4: Rapper Rick Ross is back with a brand new album titled Set in Stone. The project has 19 tracks and is up on all platforms.
5: You're listening to City FM 89.
6: Shared bundles, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए. जैज कैश है ना.
7: फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @cityfm89
8: फॉर योर इन्फिनिट स्क्रोलिंग रील फिक्स.
9: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है, वो भी किस्तों में? बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश.
8: वी आर
1: सिटी एफएम 89.
8: You're listening to
10: Dark Room with Dabu Javeri.
11: Diana Ross out of Motown and into disco with that fabulous track. And even the Jacksons, as in Michael Jackson and his brothers, also got swept away by the disco crowd. So this next one is them, the Jacksons, with Shake Your Body Down to the Ground.

0: your road rage.
1: City FM 89.
2: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
0: Our TikTok will have you scrolling for days.
3: Follow us at CityFM 89
0: on TikTok.
4: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है, वो भी किस्तों में? बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में. तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज़ कैश.
1: CityFM 89.
5: Your drive along companion.
1: You're listening to
6: Dark Room with Tapu Javeri.
7: The incredible Chaka Khan taking a Prince track and making it entirely hers. That was I Feel For You. Meanwhile, this is Madonna with a little bit of 80s groove.

0: perfect antidote to your road rage. Your road rage.
1: City FM 89.
2: Shared bundles. वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
1: Follow City FM 89 on YouTube to get your digital content fix. Podcasts, reviews, interviews and so much more. Non-stop content for you.
3: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है, वो भी किस्तों में? बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में. तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश.
4: City FM 89.
5: Attention, the standard commute has been decommissioned.
6: Introducing a system override for your ears.
5: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
7: Join ABD as he takes over the streets.
5: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
6: your evenings just got an upgrade.
7: The Rush Hour with ABD.
5: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
6: Tune in or get left behind.
0: Don't adjust your dial.
1: This is
8: City FM 89.
0: You're listening to
1: Dark Room with Tapu Javeri.
9: Thought I'd end it with a little bit of 80s flair. This is more disco than it is 80s. This is Black Box with Everybody, Everybody.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: Coming up next.
1: Future Sounds.
4: You're listening to City FM 89.
6: Trending today.
7: Rapper Rick Ross is back with a brand new album titled Set in Stone. The project has 19 tracks and is up on all platforms.
1: City FM 89.
8: Shared bundles. वो भी डिस्काउंट पर सब्सक्राइब करना तो बनता है तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
9: Have you saved our WhatsApp number yet?
10: 03142898989.
9: Get in touch over WhatsApp.
11: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है वो भी किस्तों में. बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में. तो जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश.
1: 89.
2: We're playing your song.
1: Future Sounds.

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 p.m.
3: City FM 89.
4: Shared bundles. वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
5: Our TikTok will have you scrolling for days.
6: Follow us at City FM 89
5: on TikTok.
7: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है, वो भी किस्तों में. बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में. तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश.
8: City FM 89.
9: You got me going crazy.
10: Hold on. Special delivery coming through.
11: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
12: We're now live on WhatsApp.
13: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
12: It's as easy as 03142-898989.
14: Save our number now and WhatsApp us.
15: You're listening to City FM 89.
16: We're playing your song.
1: You're listening to
17: Future Sounds.
16: Future Sounds.
17: Stay fresh, stay lit.
18: New music drops right here.

0: road rage.
1: City FM 89.
2: Shared bundles. वो भी डिस्काउंट पर सब्सक्राइब करना तो बनता है तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना
0: Follow City FM 89 on YouTube to get your digital content fix. Podcasts, reviews, interviews and so much more. Non-stop content for you.
3: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है वो भी किस्तों में बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में तो जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश
4: City FM 89. We're playing your song.
1: You're listening to
5: Future Sounds.
6: Future Sounds. Future Sounds.

0: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए। जैस कैश है ना।
1: Follow us on Instagram at CityFM89
2: for your infinite scrolling wheel fix.
3: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है, वो भी किस्तों में? बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
4: City FM 89.
5: You're listening to
6: Non-stop hits.